सुनिया पक्की 420 सुनिया पक्की 420 मार मार के अरे मार मार के चप्पल मेरी कर दी चप्पल मचंती दुनिया 420 दुनिया पक्की 420।

मोटा बकरा मोटर साड़ी सुर में जानी, जहां भी तकड़ा इंजन देखा करती शंटम शंटी, दुनिया 420 दुनिया पक्की 420।

दिल को मैंने दी कसम की न धड़के कभी तेरे बिना। अमाल मालिक, हाँ अमाल मालिक और अरिजीत सिंह की आवाजों में आप गीत को सुने। उजाला रेडियो है ये।

ना मिलूंगी नजर हटा लो, लता जी की आवाज में इस गीत को आप सुने। और फिल्म का नाम प्यार का मौसम, फिल्म प्यार का मौसम का गीत उजाला रेडियो पर। और अब किशोर कुमार के साथ लता जी, फिल्म जोशीला का गीत।

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: एक रोज जिंदगी के रूबरू आ बैठे। जिंदगी ने पूछा, दर्द क्या है, क्यों होता है, कहां होता है, ये भी तो पता नहीं चलता। तन्हाई क्या है आखिर, कितने लोग तो हैं, फिर तन्हा क्यों हो। मेरा चेहरा देखकर जिंदगी ने कहा, मैं तुम्हारी जुड़वा हूं, मुझसे नाराज ना हुआ करो।

सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। मोहम्मद रफी साहब की आवाज, फिल्म कन्यादान का गीत।

सुनो मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तुझ

उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

वेलकम है हजरात, भूल के गोले उबम, रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे, अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब।

छंद सोनारे तू मुझे जान से भी प्यारा है। उजाला रेडियो पर आप सुने अनमोल ये दख्त।

0: सैया दिल में आना रे और आके फिर न जाना रे। मोये मार सैया की तो आदत है आकर के फिर चले जाने की। दिस रामदेव चैतू अब उजाला रेडियो का प्रोग्राम में हिस्सा ले रहा है, सुनिए।
1: सुनावे लागे एक सुंदर सुगंध।

नम्र संस्कार होने वाले हैं उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

0: सवाल का। फिल्म का नाम है शहजादा, दिसम वन शशवत सिंह सामा में चलमली कोलगरे हियर ऑन द फोकस बाय उजाला रेडियो। या वेलकम बाय उजाला रेडियो, ये बेंट ऑफ सेम टॉप उजाला रेडियो, दुनिया का मशहूर हिंदुस्तानी हिट रेडियो। या द प्लेक वार ये ऑलवेज वेलकम बेंट।
1: जो मिलके बिछड़ते

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्राग फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

मेरे ये दिन में हुई कैसे चांदनी या प्रख्त मोय हियर सो बै उजाला रेडियो मोय नंबर्स सिर्फ मोय मोय गाना वो भी स्पेशल आप सभी के लिए या फाइन दैट यू अफगस्टन बेंट ऑफ उजाला रेडियो एंड फाइन दैट यू लुस्टर्ड नार दुनिया का मशहूर हिंदुस्तानी हिट रेडियो Op dit moment de stem van Arijit Singh samen met Shreya Ghoshal in deze nummer uit de film Rocky aur Rani ki Prem Kahani. Ik groep ze het song. Ik ben Misal Geet. Organa kanam he weer.

का कम बैक ही नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो बैडी बोलती है। गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

0: में गेम मेरे घंटे पे प्रेस। बैड बॉय शाह कैसे तुझे तेरे बस का लगा, ना मुझे ऐसे मस का लगा। रही ना किसी काम धाम की, जब से लड़की को चस्का लगा मेरा। या
1: it's your boy Bacha. Samen met Payal Deel, die we al enige tijd kennen. En zij...
2: Live vanuit de hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40 jaar. Niet 10.

This Ujala Radio, you are Kapayham, मैं हूँ शहीद गुलजार। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मिले जुड़े संगीत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो। आप प्रोग्राम को सुनते रहना, सुनते ही जाना। हम आपको इस घंटे में क्या क्या सुनाने वाले हैं? Stay tuned! The first one, हम जिस रास्ते पे चले

0: हम जिस रास्ते पे चले उस रास्ते पे थे प्रीत प्रीत खड़ी क्या गाना है, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज।
1: रेडी, वन टू, वन टू।

0: Yalla Radio. Tu jaane hai, toch?
1: Lijiye, sarashe narz hai, ke piya basantire, kahe sataye tu aaja. मिले जुले संगीत में ये सिलेक्शन भी आपकी खिदमत में अर्ज है, आप मुलाहिजा फरमाइए।

पिया बसंती रे, पिया बसंती रे, काहे सताए तू आजा। नॉनस्टॉप आपकी खिदमत में मिले जुले संगीत पेश किए जा रहे हैं। ज्यादा बातचीत नहीं, सिर्फ सॉन्ग्स।

ये मौसम ये रात चुप है, ये मौसम ये रात चुप है, ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा कि मेरा हमदम मिल गया। द नाइटिंगेल, लता मंगेशकर की आवाज़, उजाला रेडियो के जरिए आप सिलेक्शन सुने हैं। इस बार वंस अगेन प्रोग्राम में द गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया सोनू निगम। फिर से मेरा दिल बेकरार करने लगा।

0: for music. Enjoy the vibrations of Ujala Radio wherever you are.
1: You are. You are.
2: The most sensational and
3: the best.
4: The best.
0: Same, same, same, same, but different. Wohi naak, wohi aankh. मिले जुड़े संगीत में आपके मनोरंजन के वास्ते ये सिलेक्शन भी यर्स है. सुनते रहना प्रोग्राम को, सुनते ही जाना.

0: सब कुछ है सेम सेम। 2007 का फिल्म बॉम्बे टू बैंकॉक। We are same same but different. Kapun kav.
1: No different.
0: Not different. Sawadee kav. क्या बात है, सिलेक्शन आपके खिदमत में अर्ज की गई है उजाला रेडियो के जरिए। यू आर का पैगाम आप सुनते रहना और सुनते ही जाना। कुछ मिले जुले संगीत शहीद गुलजार के जरिए पेश की जा रहे हैं और ऐसे में हो जाए कि मैं गुनहगार हूँ जो चाहे सजा दो मुझको।

सोचने की बात है। मैं गुनहगार हूँ, जो चाहे सजा दो मुझको। मैंने सपने में तुम्हें छेड़ दिया। कितना बदमाश लुंडा हैगा, सपना में छेड़े है। महेंद्र कपूर और द नाइटिंगेल, लता मंगेशकर की आवाज।

It's the rocking and most sensational leader in broadcasting. You are Ujala Radio का पैगाम. शहीद गुलजार हाजिर है लेकर कुछ मिले जुले संगीत और ऐसे में राघव की आवाज तेरी बातों.

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। एक खफालक मैं राघव की आवाज आप अभी सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए। That's all I really wanna do. Let's enjoy this song.

0: हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने, हमका बताए हमके कहाँ कहाँ दीवानी है।
1: हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने हैं।

सिवा हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने हैं। और लड़कियां डराई डराई बोले और कोई ना है तू खाली बैठे। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर और द मैन विद द एवरग्रीन वॉइस किशोर दा की आवाज आप सिलेक्शन अभी सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए। और अब एक आखिरी सिलेक्शन हम आपको सुनाने वाले हैं राहत फतेह अली खां की आवाज में। हमारा साथ देने के लिए, सुनने के लिए शुक्रिया और धन्यवाद। मैं हूँ शहीद गुलजार, हम आपसे फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।

नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहीद गुलजार, ये है यू आर उजाला रेडियो और इस बार आप सुनेंगे द गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया, सोनू निगम की आवाज। ये तेरे दिल का मेरे दिल से कोई रिश्ता पुराना है। लीजिए, अर्ज है सोनू निगम।

ओ तेरे दिल का मेरे दिल से कोई रिश्ता पुराना है। सिलेक्शन आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए, इस बार द गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया सोनू निगम से। शामे गम की कसम, एक गोल्डन ओल्डी सिलेक्शन हम आपको सुनाने वाले हैं, और इस बार है जिसकी आवाज मखमल की तरह मुलायम है, द मैन विद द गोल्डन वॉइस, तलत महमूद।

लीजिए मिले जुले संगीत में हम आपको इस बार सुनाने वाले हैं सुरों का बादशाह, संगीत का फरिश्ता पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब की आवाज, सांसों में कभी।

0: कैसे हो? 24/7
1: उजाला
2: उजाला
1: उजाला मिक्स मैक्स सॉन्ग्स में इस बार हिमेश रेशमिया की आवाज सारी सारी रात। वैसे यूआर के फोन का नंबर आप नोट कर लेना 024-09-0807 पर आप डाल कर सकते हैं रेडियो के क्षेत्र पर हर एक काम और काज के वास्ते। इट्स यू आर द रॉकिंग एंड मोस्ट सेंसेशनल।

Yes, sir. It's the rocking and most sensational leader in broadcasting. You are. उजाला रेडियो के जरिए सिर्फ यू आर पर आप ऐसे ऐसे सिलेक्शंस सुनते हैं. मिक्स मक्स सॉन्ग्स. याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार ऐ कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो ना जहाँ हो तुम.

द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर और दादा हेमंत कुमार की आवाज के याद किया दिल ने कहां हो तुम झूमती बहार ऐ कहां हो तुम प्यार से पुकार लो ना जहां हो तुम। हमारे सभी श्रोताओं को एक शुभ दिन मुबारक दिन अर्ज है। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं आप खुश रहे और सलामत रहे। आपकी खिदमत में हाजिर है आपका खादिम शहीद गुलजार।

सारा प्यार है बेकार। आइए मिलकर सुनते हैं सिलेक्शन को यू आर के जरिए।

बल्ले बल्ले सारा प्यार है बेकार। सिलेक्शन आपने सुने हैं। आप फोन का नंबर जरूर नोट कर लेना 02409 0807 पर आप डाल कर सकते हैं रेडियो के क्षेत्र पर हर एक काम काज के वास्ते सोमवार से लेकर शनिवार तक। यस माय डियर मैं जटई अमला पगला दीवाना। अगर आप नाचना चाहेंगे तो आप शर्माइए मत। Just enjoy the song by You Are.

वादिया मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम और कहाँ जाओगे। लीजिए अर्ज है, पेश खिदमत सुरों का बादशाह रफी साहब।

बीते हुए दिनों की हिट सॉन्ग आपने भी सुने हैं रफी साहब की आवाज में, कि वादिया मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा और तुम कहाँ जाओगे। सुनते रहना प्रोग्राम को और सुनते जाना, और भी अच्छे अच्छे सिलेक्शंस हम आपको सुनाने वाले हैं हमारे बाद में भी। और कौन कौन आज आपकी खिदमत में हाजिर होने वाले स्टूडियो में, आप सुनते रहना और सुनते ही जाना।

मैं तुझे मांग लूं, तू मुझे मांग ले खुदा से। सुनो पिया, कल रात से मुझे मांग लूं। सोये नहीं, अब रात की कहना सूतीस, खुदा जाने। इट्स यू आर उजाला रेडियो का पैगाम, मैं हूँ शहीद गुलजार। प्रोग्राम को आप सुनते रहे ना सुनते जाना, हम आपसे इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।

फोन का नंबर आप नोट कर लेना 020-409-0807। रेडियो के क्षेत्र पर हर काम काज के वास्ते एमस्टरडैम में 020-409-0807।

0: in Zuid-Limburg en een zwakke noordenwind die afneemt. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio. देशभर में सुनाई देता है via DAB+. तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देशभर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हक द बेस्ट उजाला रेडियो
2: तुझे लगे ना नजरिया
1: वे यहां बरी स्टूडियो नार ऑन स्टूडियो उजाला रेडियो के स्टूडियो में तो भेजिए आप naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kunnen zetten. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp.

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं और हमारे प्यारे सुनने वालों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। मैं हूं सुभाष और जहां तक मेरी आवाज पहुंची वहां तक हम आप सभी को बहुत ही प्यार से, दुलार से, दिलो जान से स्वागत कर रहा हूं आज का प्रोग्राम में।

वेल दिल मेरी ना सुने दिल का मैं क्या करूं, कितना बिसाऊं कितना मोई, बोले दिल मेरी ना सुने, बोले दिल की मैं क्या करूं यार।

0: तेरी उल्फत मेरी एक दिल रुबा है, जिल पर जिस पर मेरा दिल फिदा हुआ है। इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, प्यार भरी गीत जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, और आप लोग उजाला रेडियो का प्रोग्राम सुन रहे हैं, और दफ्तर का फोन का नंबर है 9204909907 पर आप लोग तार कर सके हैं। और चलिए गाना जो आप लोग सुनेंगे, यू आर उजाला रेडियो।
1: समीर, ओ माय गॉड, तुम आ गए।
2: शालू,

वेल यार, मैंने देखा है आपकी आंखों में प्यार प्यार एंड दिल का सुकून, बोले जो है मोहब्बत। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप

बलियार कितना कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करता तुझे देखता रहूं। अविश्रो से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने।

0: मेरा दिल कप बन जाएगा बस तेरे काबिल यार, हाय मेरा दिल। इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने। चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे यार, एक और ऐसा ही बहुत ही प्यार प्यार प्यार प्यार के गीत।
1: मैं रंगी जावा।

वेलियार ओ रे पिया पिया पिया रे, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने, लव सॉन्ग्स आप लोग को सुनाए, रोमांटिक लव सॉन्ग्स आप लोग सुन रहे हैं यार, यू आर पर उजाला रेडियो पर।

वादा है मेरा कि वेल जिए बस तेरे लिए यार, मैं हूँ तेरे लिए वादा रहा, मैं हूँ तेरे लिए यार। और चलिए एक और रोमांटिक सॉन्ग हम आप लोग को सुना देते हैं।

बलियार सुन सुन बेलिया, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने, फिल्म का नाम सऊदीन ऑन दिस देश, और यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम है यार। खाली रोमांटिक रोमांटिक गाना जो हम आप लोग को सुना रहे, ओनली लव सॉन्ग्स।

हाँ हाँ हाँ यार, ओ मैंने मैंने मैंने क्यों प्यार किया और ये दिल क्यों बेकरार किया। लल दिलवा दिलवा थोड़ा से पागल है यार, और इस तरह से पूछी से ओ मैंने क्यों प्यार किया और ये दिल क्यों बेकरार किया।

सामने तू मेरे दिल में यूं ही रहना बहार बहार बनके। फिल्म का नाम राजा हिंदुस्तानी और स्टेशन है उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। मैं हूं सुभाष और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते एंड आदाब। कुछ मिले जुले संगीत से हम आप सभी को खिदमत करने वाला हूं और जहां तक मेरी आवाज पहुंची वहां तक हम आप सभी को प्यार से दुलार से स्वागत कर रहा हूं।

बस बस यार इतना है तुमसे कहना, मैं रहूं या ना रहूं बस यार तुम साथ ही रहना, बस इतना है तुमसे कहना। इस तरह से इतना मोई गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, रोमांटिक सॉन्ग जो हम आप लोग को सुना रहे हैं। यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम हमारे प्यारे सुनने वालों, और हमारा फोन का नंबर है, दफ्तर का फोन का नंबर है, हम आप लोग से बता दें हर एक काम काज के लिए यार आप लोग तार कर सके हैं 920-409-0807 पर।

आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, मैं हूँ हीरो तेरा। आओ इस तरह से गाना जो आप लोग सुन रहे थे, और आशा है कि आप लोग को भी इतनी से मोई लगल हुई। कि आप लोग भी सुन करके बोले हो यार मैं हूँ भी तेरा हीरो, मैं हूँ तेरा हीरो भी है।

कमाल यार, तुम है मेरा प्यार जब से तू मेरी बाहों में है। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने। और चलिए अब की बार एक और ऐसा ही रोमांटिक गीत हम आप सभी को सुनाने वाले हैं और हमसे चलो गीतों के भी मोई लगी आप लोग को भी पसंद आते होंगे।

वेल यार, क्या चीज है तुम, तुमको खुद मालूम नहीं है। और तू जान है मेरी, तुमको मालूम अभी नहीं है। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने, यू आर उजाला रेडियो पर।

मेरी तरह वेल मेरी तरह भी प्यार कर कर देखो ना, बोले कितना मजा है एंड कैसा नशा है, मेरी तरह प्यार करके देखो ना।

0: गई।
1: तेरी तेरी चुनरिया दिल ले गई और धीरे धीरे बोले तेरी धड़कन। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। अब की बार चलिए गाना जो प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाने वाले हैं, बस चलिए गाना जो आप लोग सुनेंगे यार, एक और ऐसा ही गीत जो प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाने वाले हैं। और जो गाना हमारे तो लोग के सुनावे गनवा तनिस तनिस ऐसे होना चाहिए। और गाना जो आप लोग सुनेंगे यार, तो इस तरह से पेश है आप सभी सुनने वालों के लिए जो आप लोग हमारे साथ ही दे रहे हैं।

वेल यार, जादू है कि नशा है और गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे और हम सुचुल की गाना तो लोग कभी मोई लगल हुई एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं।

और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने यार, और आशा है भी कि तो लोग के गाना भी मोई लगल हुई, और यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं।

और चलिए अब की बार तो एक और ऐसा ही गीत जो प्रोग्राम में हम आप लोग को सुना देते हैं। और गाना जो हम आप लोग को सुनाने वाले हैं, यार कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, और चलिए गाना जो आप लोग को हम सुनाने वाले हैं, और इस तरह से होना चाहिए।

0: एक चीज के लिए एक आदमी अमूल्य हो जाते हैं, जिसकी मोल नहीं, तोल मोल नहीं होती, और ये चीज हमेशा खुदा के घर से आता है। वो चीज थी मुकेश की आवाज की टिम्बर, जिसका वो धनी था। वो टिम्बर किसी की आवाज में मुझे और सुनाई नहीं दी।
1: भाई और बहनों, ये है मेरी जिंदगी का पहला गाना।

0: बेटा ये तमाशा देखोगे?
1: हाँ।
0: तुम बाद में देखेंगे ना?
1: नहीं, मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफा मार के दिखाऊंगा।
0: बेटा यहाँ लाफा नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया, चलो जो घर चले।
1: नहीं, मुझे अभी देखना है।
0: देखना?
1: हाँ।
0: चल बेटा।

0: बड़े मियाँ, इन लकड़ियों की क्या कीमत है?
1: इनकी कीमत हम मियाँ बीवी का एक वक्त का खाना।
0: तो लो, ये तुम्हारे दोनों मियाँ बीवी के लिए काफी है, मंजूर है ना?
1: जी हाँ।
0: आओ ले आओ।
1: चलिए।